रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 3 बज्यो 8:30 PM

सूचना संगीतर मनोरंजन को अतुल साहिनी यो हो रेडियो साहिनी 99.8 मेगाहर्ट्ज।

सूचना संगीजा मनोरंजन को अटल साहिनो यहो रेडियो साहिनो 99.8 मेगाहर्ज।